क्या बात है, कैसे हो यार? बल्ले बल्ले है, ठीक ठाक एंजॉय कर रहे हो? खूबसूरत, बड़ा ही प्यारा, बड़ा मीठा जहा मौसम है, तो एक बार फिर एक सोहना दिन, बड़ी सोहनी शाम एंजॉय करने लिए आप पहुंच चुके हैं, तो इकट्ठे रौनक मेला सजाने हैं। तो स्टूडियो का नंबर तुम्हें याद है, दसन की लड़ है, आई डोंट नो। चलो कुछ एक होंगे मित्र सज्जन साढ़े नवे जड़े कहते भाजी, असं सारू तो पता ही नहीं सी भी थोड़ा रेडियो आता, इस सब कह लो कि पहली बार सुन रहे, बड़ा आनंद आ रहा। सो रेडियो प्रोग्राम पंजाबी दा पिछले तुम तकरीबन ऑलमोस्ट 35 साल तो इंजॉय कर रहे हो, तो उम्मीद है कि तुम जिन्ना असी ना प्रोग्राम पेश करने वेले इंजॉय करते हैं, असी होप करते हैं कि उस तो कितने वध तुसी सुन के इंजॉय करते हो, क्योंकि देखो जिहड़ा सुनने वाला ना वो ताही इंजॉय करूगा जे पेश करने वाला बंदा खूब इंजॉय कर रहा। हुण तुसी फॉर एग्जाम्पल लै लो, जे कोई बंदा खड़ा ला रहा, कोई कॉन्सर्ट से परफॉर्म कर रहा, जे उन्हूं आप ही नहीं मजा आ रहा तो ऑडियंस नूं की मजा आना। कोई क्रिकेट प्लेयर है, बैट्समैन है, उन्हूं मजा ही नहीं आ रहा खेड़ देनू, तो उसकी फिर गेम भी वह चीज रिफ्लैक्ट करूगी, उन्हूं खेडन वेले नहीं मजा आ रहा, तो फिर जो देखने वाला उन्होंने कितने आना। सो यही चीजा ने जो भी करते हो ना, पूरा एन रीज नाल पूरा इंजॉय करके करया करो, ता ही गल बनती है। हुण एवें आपां उत्तों उत्तों करी जाइए, उहदा की फायदा? सो खूब इंजॉय करना बनता, तो थोड़ी एक आवाज तो एक उस चीज की झलक नजर आवे कि बल्ले यार बंदा तो आए प्रोग्राम कर रहा है, जिवें इहदा वाकई शौक है। चलो साडा तो हैगा ही शौक है, बट होना इदा चाहिए, ता ही तुसी फिर सुन के कहने नवी यार बल्ले बल्ले प्रोग्राम सुन का मजा आ गया। सो खैर, स्टूडियो का नंबर है 905-673-3337। कोई भी गलबात करनी है साढ़े नाल, कोई भी नंबर लेना साढ़े तो, तुसी कोई भी गीत संगीत लगवाना, गल की कुछ भी है, नंबर घुमा लो 905-673-3337 9056733337 ते गलबात थोड़ी साड़ी हो सकती है। ते आगे पगां पोचमियां वाले हैं, रही बच

0: 7998 7877 sofastudio.ca। थैंक यू जी।
1: ओहो, सर्दी च हीट नहीं चलती ते गर्मी च एसी।
2: ले आपा हुणे करदे आ संधु साहब दा गल ते करदे आ मसले दा हल।
1: एसी फर्नेस गैस लाइन वाटर हीटर या ह्यूमिडिफायर सर्विस या इंस्टॉलेशन नाउ एयर कंफर्ट।

0: पंजाबी लहरा
1: प्रोग्राम समर्पित है रंगले पंजाब नूं
0: पंजाबी बोली ते पंजाबी सभ्याचार नूं
1: गुरु साहिबान पीरां फकीरां दी धरती नूं
0: ठंडियां छावां जीआं मावां नूं
1: चौड़ियां छातियां वाले गभरूआं नूं
0: चरखा कतदियां ते पींगां झूटदियां मुटियारां नूं
1: लोक गीतां भंगड़े अते गिद्धियां दीआं छणकारां नूं
0: प्रोग्राम पंजाबी लहरां
1: हफ्ते दे सत्ते दिन प्राइम टाइम ते पंजाबी लहरां पंजाबीयत दी सेवा विच
2: The views and opinions of the guests and sponsors are solely theirs and not that of the hosts or management of Punjabi Lehra. Punjabi Lehra is not responsible for any interactions our listeners have with any businesses advertised on our shows.
3: ਇਹ ਸੱਚ ਕਹੇ ਜੇ ਹੁੰਦਾ
4: ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਪੱਕਦੀ ਰੋਟੀ ਸੱਚ ਹੈ
5: ਮਿੱਟੀ ਚੁਗਦੀ ਫਸਲ ਸੱਚ ਹੈ
4: ਖਰੋ ਦੀ ਪਾਣੀ

0: is AM 530. CHLO AM. Serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at AM530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: 32, 55, 80.
2: 98.
1: 80. गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो?
2: काउंटिंग नहीं, ए ते 32, 55, 80 ते 98 इंच दे टीवी ने
3: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने। इन्ना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे, हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते, 32 तो 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने।
1: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी, कॉल 905-450-2828, 905-450-2828।
4: मस्कोका अंदर 1.5 एकड़ ते 2600 स्क्वायर फुट दी कॉटेज सेल ते आई है। 3 bedroom, 2.5 वॉशरूम हन। हाई एंड दे फर्नीचर ना फुली फर्निश्ड है। $30,000 दा जनरेटर अते 14x14 feet दा पैड भी बनया है। 2 साल दी नवी कॉटेज $100,000 दी इनकम जनरेट कर दी है। 12x30 feet दा डेक है, प्लस वॉकआउट बेसमेंट भी है। मस्कोका रूम भी फर्निश किया गया है। पीछे पानी है अते खूबसूरत है। क्लब हाउस बन रहा है जिथे स्विमिंग पूल भी होगा। बीच भी नजदीक है। जानकारी लिए कॉल जितेंद्र गंदम 416-265-2222, 416-265-2222.
0: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton.

0: इंडियन फ्रूट लैंड ते मेगा सेल लगा दी है जी। पिल्सबरी चक्की आटा 20 pound 10.99 का, स्वर्ण चक्की आटा 20 pound 10.99 का, पिल्सबरी मल्टी ग्रेन आटा 20 pound 12.99 का, मधाणी का देसी घ्यो 22.99 का, टाटा प्रीमियम टी या टाटा गोल्ड टी 9.99 की 1 kilo, मसूर दाल चना दाल 3.99 के 4 pound है, गोभी 1.99 ईच, मस्टर्ड ऑयल 15 liter 17.99 मिलेगा। ते सत्तर दिया सत्ते लोकेशन ते सेल चल रही है इंडियन फ्रूट लैंड।
1: Ladies and gentlemen, introducing from CHLO AM 530, the number one radio host in the world, Dave.

0: समोसा एंड स्वीट फैक्टरी जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले फॉर जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਹਿਜਰਾ, ਆਟੋ ਹੋਮ ਐਂਡ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬ੍ਰੋਕਰ। ਫੋਰ ਆਟੋ ਹੋਮ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਕੋਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਰ ਦੈਨ 15 ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 647-241-1309 647-241-1309 ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ TFSA, RRSP ਜਾਂ RESP ਜਾਂ SIP ਖੁਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਆ, ਆਪਣੀ ਰਿਟੇਨ ਅਰਨਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕਲੀ ਰਾਈਟਲੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 647-241-1309 647-241-1309।
2: Kataria Tours and Travels located near 2883 Derry Road East Upper Airport and Derry the intersection upper. Tusi cheap flight tickets Nepal de vichu Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar de route options sunu chahide ne. Ja tusi visa services Nepal de vichu puri family vacation upper jaan di soch rahe ne jithe tuhanu all inclusive vacation packages bhi milde ne. Pahunchna wa ji Kataria Tours and Travels, Airport and Derry the intersection upper. Call kar sakde ho 905-678-1200 905-678-1200 Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection upar.
3: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है।
4: 4165700157। नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
5: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888, दैट्स 905-460-8888।
4: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
6: Noble Fresh Foods ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਟਾਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਲੋ ਲੋ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਫਰੈਸ਼ ਫੂਡ ਫੇਰ ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਚਾਵਲ, ਨਾਲੇ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਸਭ ਮਿਲੇਗਾ ਨੋਬਲ ਫਰੈਸ਼ ਫੂਡ, 2945 ਸੈਂਡਰਵੁੱਡ ਪਾਰਕਵੇ ਈਸਟ, ਦੂਸਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 20 ਗਲਿੰਗਹਮ ਡਰਾਈਵ ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ। ਫੋਨ 2898010566। ਨੋਬਲ ਫਰੈਸ਼ ਫੂਡ।
7: ਵਿਮਲਾ ਵਿਲੇਜ ਲਵਲੇ ਚ ਪੜਦੀ ਪੀਓ ਚ ਜੰਟ ਪੜਦਾ, ਵਿਮਲਾ ਵਿਲੇਜ ਲਵਲੇ ਚ, ਵਿਮਲਾ ਵਿਲੇਜ ਲਵਲੇ ਚ ਪੜਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਪਰਾ ਗੋਇਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਤਨੋ ਦੂਰ ਰੇਡੀਓ ਸੁਖੀ ਨਿੱਜਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ।

0: 5.
1: थैंक यू।
0: कोई गल नहीं, इन्हों का नाम है जी डॉक्टर कुलदीप।
1: कुलदीप थैंक यू।
0: कोई गल नहीं, कह दिया नवी तो मिले नंबर, नो प्रॉब्लम एनी टाइम। तो एक तुसी दुआबा ट्रैवल नू याद रखो, इंडिया किसने जाना या इंडिया तो कोई आ रहा, नंबर वन तुसी टिकटा लेनिया तो दुआबा ट्रैवल एंड टूर। दुआबा ट्रैवल दे अमन अते सौरभ जी नू फोन करो 905-796-7800, 905-796-7800, 905-796-7800। दुआबा ट्रैवल एंड टूर, दुआबा ट्रैवल एंड टूर की टीम के नाल तुसी संपर्क जरूर करो। तुसी एक बार फिर तो याद रखो भी लवाना वेलनेस स्पा, लेडीज दईए कुछ डीलां थोनू। मैनू पता लेडीज नू बड़ा चा हुंदा वीकेंड है भाई, फेशियल करा लीए, वैक्सिंग करा लीए, लेजर करा लीए। सो लवाना वेलनेस स्पा एयरपोर्ट रोड अते स्टील्स दे कोर्नर ते तुसी पहुंचना। हाइड्रा फेशियल 150 दी थां ते मेरा नाम लै दियो $130 च, लेजर हेयर रिमूवल 250 दी थां ते मेरा नाम लै दियो $200 च, वैक्सिंग फुल बॉडी $120 दी थां ते मेरा नाम लै दियो $100 च, अंडर आर्म फेशियल स्पेशल $60 वाला अंडर आर्म कराओ $50 च, बैक फेशियल $80 वाला $60 च। ते जिन्होंने मसाज कराने आर एम टी वी इतने इन्हों को बेनीफिट्स जो थोड़े को है यूज करो, बहुत ही वधिया थेरेपिस्ट ने। ते बिना आर एम टी वी तुसी मसाज करवाना $80 वाला घंटे का मसाज सिर्फ 75 दे विच, 341 पार्कहर्स्ट स्क्वेयर एयरपोर्ट रोड अते स्टील्स लवाना वेलनेस स्पा। कोई बैक पेन है, सायाटिका तुसी ट्रैकिंग दे विचों ते बह बह के थोड़ी बैक नू बहुत इशू आ, तां 416-881-5385 लवाना वेलनेस स्पा, 341 पार्कहर्स्ट स्क्वेयर एयरपोर्ट रोड एंड स्टील्स दे कोर्नर ते, 416-881-5385 दे उते संपर्क जरूर जरूर जरूर करो। सो प्रोग्राम पंजाबी दरा तुसी सुन रहे हो ते कॉल थोड़ी रह गई, जरूर कर सकते हो फिर तो 905-673-3337 ते 905-673-3337 अपना नंबर है। ते दो बोल सुन दे, एक बाई ने रिक्वेस्ट की थी।